शिकस्तकाष्टि हे तेजधारा, नजर से रूपोश है किनारा। शिकस्तकाष्टि

कहूँ मैं उन सुनाऊँ उनको मैं हाल दिल का, कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो नबी अकरम शफी।

गर्चे पुर खता है पर कहां जाए तेरा बंदा, तेरे दर पर तेरा बंदा व उम्मीद करम आया। अल्लाह अल्लाह।

बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। कब से हूँ मैं वे ख्वाब गफलत, बस अब जग

बस एक अगर हूं तो खार में हूं। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ माई यंग फ्रेंड्स हू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, ओ अल्लाह, इन योर गार्डन एवरी वन इज अ फ्लावर, द ओनली थॉर्न इन योर गार्डन इज माई सेल्फ।

बस एक अगर हूं तो खार में हूं। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ माई यंग फ्रेंड्स हू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, ओ अल्लाह, इन योर गार्डन everyone is a flower. The only thorn in your garden is myself.

सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मश

मुझको नफरत हो हर मासियत से, रूह को मेरी ऐसी दवा दे। हो तकाजा अगर मासियत का, हूं न मगर